सरगम के सभी श्रोताओं को इंदु का नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आज हम सेलिब्रेट और वी पेइंग ट्रिब्यूट टू, आई शुड से नॉट सेलिब्रेट, पेइंग ट्रिब्यूट टू राज कपूर जी। 2nd of June इज हिज डेथ एनिवर्सरी। 1988 ही पास्ड हुए एंड आई थिंक व्हाई नॉट वी सेलिब्रेट द ही वॉज कॉल्ड द बिगेस्ट शो मेकर ऑफ द इंडियन सिनेमा। सो इट्स गोइंग टू बी राज कपूर स्पेशल फर्स्ट हाफ आवर। Every break, I'll have a song of him. And in between, after 10 o'clock, आप 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशें पूरी होंगी। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150। बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाई राज कपूर जी ने। बहुत ही उनकी फिल्मों का म्यूज़िक भी बहुत ही खूबसूरत था, या कहना चाहिए कि उस ज़माने के जो सिंगर थे, हमें उनकी आदत पड़ गई है इतने सालों से सुनते सुनते, तो उनकी आवाज़ें अच्छी लगती हैं। और जो गाने हैं हमारे, आई थिंक हिस्ट्री में अगर आप कभी भी देखें, किसी शो में भी अगर आप देखें, तो लोग पुराने ही गाने गाते हैं, नए गाने बहुत कम गाए जाते हैं। दे कीप रिपीटिंग द सेम सॉन्ग्स बिकॉज देर वॉज अ रीज़न ऑफ इट। और राज कपूर जी की फिल्मों के गाने बेहद ही खूबसूरत थे। तो लेट्स सेलिब्रेट राज कपूर एंड 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशें पूरी होंगी। एंड एंड में आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले। जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि जो अगला संडे है इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम बिकॉज आई हैव अ शो। That's pretty much the last show of the summer for me, and उसके बाद I will be here, hopefully not taking any Sundays off. तो चलिए फिर गपशप होती रहेंगी। Let's enjoy some music before that.

आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सरगम, जो प्रसारित होता है रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आज आप सुन रहे हैं राज कपूर जी की फिल्मों की कुछ की। 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशें पूरी होंगी। अपनी फरमाइशों के लिए आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, एक के बाद एक खूबसूरत गाने हैं, और ये समझ में नहीं आता क्या चलाएं क्या ना चलाएं। आई एम जस्ट प्लेइंग व्हाट इज मोस्ट पॉपुलर। अगर आप कुछ गाना, और जरूरी नहीं है कि आप इनके ही गाने सुने, आई वुड लव टू हियर व्हाट एल्स यू वांट टू हियर। आई नो इट्स अ गॉर्जियस डे आउट एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गो आउट शॉपिंग, बट हाउ अबाउट जस्ट स्पेंडिंग लिटिल टाइम विद मी एंड देन यू कैन गो आफ्टर 11:30, 12। सो चलिए अगला गाना, सजन रे झूठ मत बोलो तीसरी कसम से।

कसमें, बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:04 हुए हैं और मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया. आई गॉट कैरीड अवे विद दीज सॉन्ग्स और गाने चलते रहे. पर अब समय है आपकी फरमाइशें पूरी करने का. आज का जो टॉपिक था वो राज कपूर जी के गाने आपने कुछ सुने, जस्ट अ ट्रिब्यूट. ही पास्ड अवे सम 1988. आई कैंट बिलीव आफ्टर ऑल दीज ईयर्स वी स्टिल लिसन टू हिज सॉन्ग्स एंड एन्जॉय देम एज मच. ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ चार्ली चैपलिन ऑन इंडिया. सो मूवीज आर वर्थ वॉचिंग, सॉन्ग्स आर वर्थ लिसनिंग, वॉट एल्स वी कैन आस्क फॉर. सो ये तो था लिटल वेरी स्मॉल टाइनी बिट ट्रिब्यूट टू राज कपूर जी. अब समय है आपकी फरमाइशें पूरी करने का. आई जस्ट वॉन्टेड टू कंग्रेचुलेट Sharma family. We were at one of the functions last night and it was most amazing function, and congratulations to the parents. When you know your kids get married, there's an exciting time, and congratulations to the whole family, parents and the whole family. Aap apne is pehle, let me finish this talking about this program, fir main unke liye gana chalaungi. Aap sunte hain is program ko har ravivar ki subah 9:30 se leke 12 baje tak 102.7 Radio Waterloo se. Aaj jo aapne gaane sune wo the film आवारा, मेरा नाम जोकर, छलिया, श्री 420, तीसरी कसम, जिस देश में गंगा बहती है और परवरिश से. जो गायक कलाकार थे वो थे मुकेश, सिमी गरेवाल, आशा भोसले, मन्ना डे और लता मंगेशकर. बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, सदाबहार गाने. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे. अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150. हमारे आज के स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स, आईवी ऑप्टिकल्स और इंडियन स्पाइस. इनके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी. आई ऑलरेडी स्पोकन इनफ. आप शायद गैस कर सकते हैं मेरी आवाज़ से कि आज आवाज़ ठीक नहीं है. आई प्रोबेबली स्लेप्ट अबाउट 4 hours लास्ट नाइट. पर चलिए, आज आपको यही टॉलरेट करनी पड़ेगी. गानों का आप यू नो इन्जॉयमेंट लीजिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ये जो गाना मैं चला रही हूँ, ये आज की पहली फरमाइश है जो कि मुझे कल रात ही मिल गई थी. यह है राकेश शर्मा भाई साहब की फरमाइश. जसबीर कौर की आवाज़ है और गाना है काला शाह काला. सो लेट्स ऑल इन्जॉय दिस, और उसके बाद आपकी फरमाइशें चलती रहेंगी.

और जो आज की जो आपने पहला गाना सुना था, वो जो फरमाइश थी वो रात को दी गई थी, जो आज की पहली फरमाइश है वो है कोकी की. एंड कोकी राकेश भाई सब बैट यू यू नो बीट यू अप टू दैट यू नो कॉलिंग फर्स्ट, बट हियर इट इज़. शी रिक्वेस्टेड दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड द मूवी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू, साहबीबी और गुलाम. अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, इट्स वर्थ वॉचिंग. और इसके जो गाने हैं एक के बाद बहुत ही खूबसूरत गाने हैं. मीना कुमारी लुक द बेस्ट और आई शुड से एक्टेड द बेस्ट इस फिल्म में जो है. आई थिंक इट्स हर माइलस्टोन मूवी आई शुड कॉल इट. सो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं. थैंक यू कोकी फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग. गीता दत्त जी की आवाज़ है और गाना जैसा कि बताया पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे.

चलते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ. अगली फरमाइश है सुएन की, एंड शी रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म कोयला एंड शी लेफ्ट इट ऑन मी व्हाट टू प्ले. शी डिड मेंशन दैट शी वॉच इट नाउ एंड देर इज नो मेल वोकल्स. आई थिंक दिस इज द वन शी आस्क्ड फॉर, सांसों की माला बाई कविता कृष्णमूर्ति. दिस फिल्म वॉज वेरी बहुत लाइक नो इट वॉज वेरी पॉपुलर. People liked it and songs were beautiful too. Somehow I haven't watched this movie, just some clippets here and there, but the songs are absolutely beautiful. So Sue Ann, here is a song for you, Saanson Ki Mala by Kavita Krishnamurti.

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:32 हुए हैं। समय है अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का। आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12:00 तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के कुछ गीत। समय है अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का। उसके बाद आपकी फरमाइशें चलती रहेंगी। फोन नंबर तो आप सबको पता ही है, 5198074150। हमारे आज के पहले स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स। दे हैव बीन सपोर्टिंग दिस शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एज वेल। इनकी 3 लोकेशन है किचनर वाटरलू में। यू कैन बाय any kind of food produce, freshly cooked food and vegetables and pujas. As I said, it's one-stop shop for all your everyday cooking essentials. Inki locations hain 101 Hazelgren Drive, Kitchener, 500 Glen Forest Boulevard, Waterloo, 1541 Highland Road West in Kitchener. Thank you Onkar Food for supporting this program. अगले स्पॉन्सर हैं आई व्यू ऑप्टिकल्स, और ये हमारी कम्युनिटी की बहुत साल से, अब मुझे तो साल भी याद नहीं, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन 35 ईयर्स और मोर। दे हैव बीन सर्विंग आर कम्युनिटी फॉर ओवर दैट मेनी ईयर्स, ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस। दे हैव लार्जेस्ट सेलेक्शन, you know, designer brands and great prices as well. Their location is 90 Weber Street in Lincoln Plaza in Waterloo. Their number is 519-725-2122. Contact Amin or Shamira and you won't be disappointed with their service and the product. Agle jo hamare sponsor hai wo hai Indian Spice. They're located at 373 Bridge Street, Waterloo, and there you can find freshly cooked meals, South Indian dosa and everything. They have all kind of foods, but I always eat South Indian food, so that's what I am telling you about that. And they say South Indian dosa isn't just a meal, it's a part of everyday life, simple ingredients, time-honored methods and tastes that carries generations. So Indian Spice, the location is Bridge Street and Devonport, the corner of that. Their number is 226-336-9959. And let's not forget India-Canada Association for their support for this program forever. So, ye to the hamare aaj ke sponsor. Aap, you know, listeners jo hain, unke bina ye show kuch nahi hai. Agar aap sunenge nahi, to main yahan kya karungi. So, thank you so much for tuning in every Sunday. And I know weather is really nice. Stay for a little bit longer. Ek par program khatam ho jayega, aap log aaram se bahar ghoomne jayega. राज कपूर जी के गाने चल रहे थे पहले भाग में। आई यू नो फाइनली पिक्ड अनदर सॉन्ग। आवाज़ है मुकेश की, फिल्म का नाम है छलिया और गाना है डम डम डिगा डिगा।

और आज की अगली फरमाइश है मिसेस मलिक लाउजी की, और उन्होंने फरमाइश करी है फिल्म नजराना के इस गीत की, मेरे पीछे एक दीवाना है। इस फिल्म में थे राज कपूर, वैजंती माला, शी पिक्ड अ गुड वन, और आवाज़ें जो हैं वो है लता मंगेशकर और मुकेश जी की। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम फिल्म नजराना।

अब समय एक बार आपको फिर से स्टूडियो आईडी देने का एक्सक्यूज मी, और साथ ही अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का. हम आप जो सुनते हैं इस प्रोग्राम को, ये प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से. प्रोग्राम के इस भाग में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के कुछ गीत. आई अपोलोजाइज फॉर दिस. अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए अब समय तो एक सिर्फ एक गाने का बचा है. अगर आप कुछ सुनना चाहें जरूर फोन करें, मैसेज करें. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, हु इज अ सिंगर इन अ रियलिटी शो बाय नेम तनिष्क एंड व्हाट इज द लास्ट नेम मिसेस बागची वाज विच हिंदी मूवी विच एक्ट्रेस. वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. चलिए फोन नंबर आपको पता ही है 5198074150. लेट्स स्टार्ट थैंकिंग आवर स्पॉन्सर्स. लेट्स स्टार्ट विद इंडियन स्पाइस टुडे एंड दे आर लोकेटेड एट 373 ब्रिज स्ट्रीट, दैट इज ब्रिज स्ट्रीट एंड डेवनपोर्ट कॉर्नर. And for the best South Indian food, you can go there. They have good food and excellent

लता जी की आवाज़ में हमेशा ही जादू रहता था, और साथ में थे उदित नारायण, म्यूज़िक ए आर रहमान. बहुत ही खूबसूरत गाना है. दीदी सरोज दीदी, विश यू ऑल द बेस्ट विद योर सिस्टर ज्योति जी. चलिए अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं. देर इज़ अनदर पर्सन हु हैव बीन अ बिगर सपोर्टर ऑफ द प्रोग्राम. दे लिव इन किचनो वाटरलू बट दे वर इन विंडसर एंड कॉल्ड मी फ्रॉम देयर. सो स्मिता एंड प्रतुल, दिस इज फॉर यू. शी सेड वॉट एवर द लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड आई बी ऑनेस्ट विद यू, बीन सो बिजी विद सो मेनी थिंग्स, आई हैवन हर्ड वॉट इज लेटेस्ट इन लास्ट टू वीक्स. आई शुड चेंज दैट. But here it is, Smita. If you don't tell me what you're going to, I'll play whatever is the trending right now. What is trending is Saiba by Aditya Rekhari. So let's all enjoy this and have a good stay, a good visit to Windsor.

और आज की अगली फरमाइश है माही की, और फिल्म का नाम है मर्डर. सॉन्ग इज़ कहो ना कहो, एंड आमिर जमाल इज़ द सिंगर फॉर दिस सॉन्ग.

ये जो अगला गाना है ये है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे एंड आई डोंट नो हु रिक्वेस्टेड, आई जस्ट गॉट अ मैसेज, कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एज वेल, लेट्स ऑल एंजॉय दिस.

और अब चलते हैं आज के प्रोग्राम की आखिरी फरमाइश की तरफ. आखिरी फरमाइश, ये जो फरमाइश है ये है महक की, और उन्होंने फरमाइश करी है इस गाने की, जब भी ये दिल उदास होता है, मोहम्मद रफ़ी और शारदा जी की आवाज़ में. फिल्म का नाम है सीमा. आई एक्चुअली लव दिस सॉन्ग एज वेल. थैंक यू महक फॉर रिक्वेस्टिंग इट, एंड लेट्स मूव ऑन विद दिस वन.

और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम में मेरे से मैं आपसे बात करूं वो समय समाप्त होता है. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अर्लियर, टेल मी अबाउट द तनिष्क विच रियलिटी शो ही इज इन एंड मिसेस बागची विच मूवी वॉज दैट. आई गॉट थ्री कॉल्स, आई एम नॉट गोइंग टू से योर नेम्स ऑफकोर्स. Yes, Tanishq is the right answer for Indian Idol, but Mrs. Bagchi was, there was a movie, Vidya Balan's movie, which came quite a while. There are two actually, one and two. The first one is film is Kahani. You should watch it. It's a suspense movie, not a serious suspense, but a suspense movie and a really good movie. She acted really well. I think she carried the whole movie. She's the main actress and the actor, the whole story about her. So Kahani film ka naam hai, aur wo hai usme Mrs. Bagchi. और जो सिंगर हैं वो हैं तनिष्क, इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट हैं. सो थैंक यू टू पीपल. आई एम सरप्राइज यू डिडंट नो द आंसर फॉर द हो बोथ थिंग्स, बट गुड इनफ. चलिए प्रोग्राम के अंत में मैं एक बार फिर से अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी. थैंक यू ओंकार फूड्स, इंडियन स्पाइस एंड आई व्यू ऑप्टिकल्स. धन्यवाद आप सभी का जो आप साथ देते हैं, हर संडे गाने सुनते हैं. जस्ट वन मोर रिमाइंडर दैट नेक्स्ट वीक संडे इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड. आई हैव अ शो, आई विल बी अवे, सो रिकॉर्डेड प्रोग्राम, बट आई विल बी बैक आफ्टर दैट संडे आफ्टर. अगर आप कोई गाना सुनना चाहें अगले हफ्ते, मुझे अभी मैसेज भेज दीजिएगा. आई विल इंक्लूड इट इन माई प्ले लिस्ट विच आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वीक. और धन्यवाद आपका हर सप्ताह यू नो सुनने के लिए. आपका ये जो आने वाला हफ्ता है मंगल में हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी. अगले हफ्ते मैं नहीं मिलूंगी, उससे अगले हफ्ते 9:30 बजे फिर मिलेंगे. प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा. प्रोग्राम के अंत में मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी पसंद का एक गीत. राज कपूर जी की फिल्मों में मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है आ अब लौट चलें, फ्रॉम जिस देश में गंगा बहती है. वो मैं पिछले हफ्ते चला चुकी हूँ लता जी और मुकेश जी स्पेशल में. तो ये जो फिल्म थी ये इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर. सो मैं उन्हीं की फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपको एज ए अपना फेवरेट गाना सुनाना चाहूँगी. और इसी के साथ आधा घंटे और मिक्स गाने नए पुराने चलते रहेंगे. प्लीज़ सुना ना भूलिएगा, सुनते रहिएगा. और ये जो गाना है ये फिल्म अगेन जिस देश में गंगा बहती है, आवाज़ है लता जी की और गाना है ओ बसंती पवन पागल. और इसी गीत को आप इन्जॉय करिए. इसी के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए. इंदु का नमस्कार आप सबको.